अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: रामनाथ भगवान की
1: जय।
0: श्री आनंदकंद भगवान की
1: जय।
0: श्री कौशल्यानंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री दशरथ नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री कैकेयी नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री सुमित्रानंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री चारो भैयन की
1: जय।
0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय।
0: श्री राम जन्मभूमि की
1: जय।
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि की
1: जय।
0: श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय।
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय।
0: श्री सरयू महारानी की
1: जय।
0: जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
1: जय।
0: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की
1: जय।
0: समस्त पूर्वाचार्यों की
1: जय।
0: सर्व संत वैष्णव भगवान की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: गो माता की
1: जय।
0: भारत माता की
1: जय।
0: प्रातः

प्रस्तुत है श्री गोविंद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। श्री मद्भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण गुप्त ईश्वरीय ज्ञान प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझे साधारण मनुष्य समझने वाले मूढ़ हैं, मैं तो इस चराचर प्रकृति का सर्वस्व हूँ।

श्री गोविंद आश्वस्त करते हैं कि अनन्य भाव से मेरे चिंतन में रत भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्री भगवान अन्य देवताओं की तुलना में स्वयं श्री कृष्ण की उपासना के फल का अंतर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मैं प्रेम भाव से अर्पित पत्र, पुष्प, फल व जल स्वीकार करता हूँ। अतः हे अर्जुन, तुम मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही पूजन व मुझे ही नमस्कार करते हुए मेरे ही भक्त बनो।

0: ये पानी है। जीवन के लिए तीन अनिवार्य आवश्यकताओं हवा, पानी और अन्न में से एक।
1: नदियाँ पानी ढोती हैं और साथ ही साथ बाकी तीन जरूरतें भी पूरी करती हैं।
0: नदियाँ हवा शुद्ध करती हैं और अन्न पैदा करने में सहायक होती हैं।
1: इसीलिए हमारे देश में नदियों को जीवनदायिनी माँ के रूप में

0: देखा गया है।
1: गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी से लेकर सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी तक सभी को पूजा गया है।
0: इन्हीं में से एक है बेतवा,
1: कलियुग की गंगा बेतवा,
0: परम पावन बेतवा।

0: चलो उर्मी।
1: मेघदूत के इस 24वें श्लोक में कालिदास ने बेतवा के जल में प्रिया के अधरों के स्पर्श का सुख देखा था। तो इसी बेतवा को मार्कंडे ने कुछ ऐसे कहा कि
2: जब सृष्टि विलीन होगी तो बेतवा बाल मुकुंद के उदर में समा जाएगी।
1: महाभारत के वन पर्व में तीर्थ यात्रा प्रकरण के 25वें अध्याय में भीष्म ने युधिष्ठिर को बेतवा के तुंगारण क्षेत्र का महत्व समझाया, जहां सारस्वत, अंगिरा, भृगु ऋषियों ने तपस्या की तथा लोक कल्याण के लिए अनेकों यज्ञ किए।
2: वामन पुराण में कार्तिकेय जब देव सेनापति का पद ग्रहण करते हैं तो बेतवा उन्हें श्वेतानंद प्रदान करती है।
1: वारह पुराण में बेतवा का अलग ही रंग है। इंद्र वरुण पुत्री प्रसंग में बेतवा मोहक मादक रूप में सामने आती है, तो पद्म पुराण में इसकी महिमा इन शब्दों में मंडित की गई है।

0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में झिरी बहेड़ा नामक स्थान से निकली बेतवा अपने उद्गम पर बूंद बूंद रिश्ते जल स्रोत की तरह दिखती है।
1: यहाँ आसपास के चरवाहे तक को ये पता नहीं कि यह किसी नदी का उद्गम है या यहाँ से कोई नदी भी निकली है।
2: हमें तो कुछ पता नहीं, यहाँ कोई नदी वदी नहीं है।
1: और विचित्र है कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर भोजपुर है, जहाँ यही बेतवा बहती हुई कलकल करती हुई दिखती है, जिसे वही चरवाहा अच्छी तरह जानता है।
2: हाँ जी, भोजपुर तो अच्छे से जानते हैं, वहाँ बेतवा भी है।
0: भोजपुर, मध्य भारत का सोमनाथ। यहाँ 2.3 मीटर ऊंचा तथा 5.49 मीटर घेरे वाला विशालतम शिवलिंग है।
1: यही वो पहला पुण्य स्थल है जिसे बेतवा ने अपने उद्गम से 16 किलोमीटर दूर जाकर सौंपा है।
0: विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पारियात पर्वत क्षेत्र जहाँ से बेतवा निकली है, वो स्थान समुद्र तट से 525 मीटर ऊंचाई पर है। पारियात पर्वत से निकलने के कारण बेतवा को पारियात पुत्री भी कहा गया है।
1: अलग अलग कारणों से इसके और भी कई नाम हैं। जैसे इसके किनारे बहुत सारे बेंत होते थे, इसलिए बेंतों वाली कहा गया। पहले इसकी धारा का बहाव बहुत तेज था, वेगवान था, इसलिए वेगवती कहा गया। वही बिगड़ते बिगड़ते वेत्रवती और अब बेतवा हो गया।
0: पुराण कथाओं में वृत्तासुर नामक दैत्य का उल्लेख मिलता है। पुराणकारों के अनुसार उसी ने महागंभीरा कुआ खोदा जिसमें से बेतवा प्रवाहित हुई।
1: कितना विचित्र है कि जिस नदी को दैत्य ने प्रवाहित किया वो लगातार लोक मंगल करती रही है।

0: बेतवा के किनारे हमीरपुर जिले में जिटकरी नामक स्थान है, जहां याज्ञवल्क ऋषि ने दर्शन शास्त्र तथा समाज शास्त्र की अनेकों अवधारणाएं रची।
1: बेतवा के ही तट पर चंडौत के च्यवन ऋषि ने अक्षुण यौवन तथा निरोग स्वास्थ्य का अमर रसायन च्यवन प्राश तैयार किया। इसी बेतवा के जल से उन्होंने कायाकल्प योग सिद्ध किया।
0: बेतवा के जल के औषधि गुण के बारे में जानकारी देते हुए ओरछा संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य श्री रामकृष्ण मिश्र,
2: यह बेतवती जम्बू वृक्षों से की जड़ों से स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली नदी है। इसमें इसके किनारे अधिकांश जामुन के पेड़ पाए जाते हैं और यह जामुन के पेड़ से स्पर्श करके चलने वाला ये जो जल है, इस बेतवती में हवन की सामग्री में काम आने वाली औषधि जिसे गोंदरा कहते हैं, उस वह भी अधिकांश रूप में पाया जाता है। और ये दोनों वस्तुएं जम्बू मूल का रस और गोंदरा की जड़, ये दोनों मिलकर के एक सुंदर त्वचा को साफ करने वाली और मानसिकता पर प्रभाव करने वाली औषधि का काम करती है।
0: बेतवा के ही तट पर पाराशन में पाराशर ऋषि ने दीर्घकालीन साधना से मनुष्य के मोक्ष के साधन जुटाए। तो यहीं से थोड़ी दूर इंदल घाट में इतिहास प्रसिद्ध चंदेल परमाल युद्ध देखा।

जैसे अहरन पर घन पटके जैसे जैसे करे लोहार जैसे तोता आम को काटे और तम्बोली काटे पान दर्जी काटे जो कपड़े को अपना काटे खेती किसान बड़े लड़ैया गर्मों देखे जिनकी बात कहीं ना जाए बड़े लड़ैया गर्मों देखे।

0: बेतवा तट का एक और गौरव।
1: बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल, जिनकी मुगल सेनापति सैयद गाजी से हुई युद्ध गाथा कोटरा की किंवदंती बन गई है।
0: इसी बेतवा के किनारे ओरछा में केशव ने हिंदी कविता को वो ऊंचाई दी जिसे सूर तुलसी के समकक्ष समझा गया।

0: सूर सुता शुभ संगम तुंग तरंग तरंगिनी गंग सिसोहे।
1: चंदेरी इसी बेतवा तट की शोभा है जहां बैजू बावरा ने संगीत को जीवन रस में तब्दील कर दिया था।
2: जानकारी देते हुए संस्कृति कला और साहित्यविद श्री राम भरोसे चौरसिया।
3: कला संस्कृति के बारे में तो यह था कि वास्तव में चंदेरी संगीत सूर्य बैजू बावरा का ये नगर रहा है। विश्व प्रसिद्ध वो गायक थे और आपको मालूम है कि खड़ी प्रतियोगिता में उन्होंने डांस को भी पराजित किया था। उनका यह स्मारक है।
2: बेतवा ने खड़ी बोली को मैथिली शरण गुप्त जैसा राष्ट्रकवि दिया तो ईश्वरी की फाग ने पूरे बेतवा क्षेत्र को रस रंग से भर दिया।

0: वेगवती पेत्रवंती पेत्वा झिरी बहेड़ा से झिरकर जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती जाती है।
1: अनेकों नदी नाले बेतवा को अपनी जल राशि सौंप कर उसे समृद्ध करते हैं
0: और जल से समृद्ध हुई बेतवा आसपास के क्षेत्रों की पैदावार बढ़ाती हुई आगे ही आगे बढ़ती जाती है।
1: विस्तृत जानकारी देते हुए गंज बासोदा के जल संसाधन कार्यपालन यंत्री श्री राम सिंह दरबारी।
2: विदिशा में जो हलाली है जिसको आजकल सम्राट अशोक सागर परियोजना कहते हैं, ये बृहद परियोजना है और इससे विदिशा जिले में 31,566 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसके साथ ही यहाँ पर दो मध्यम परियोजना भी है, एक कैथन परियोजना है जिससे 2500 हेक्टर सिंचाई हो रही है और ये कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी नरेंद्र परियोजना है, ये भी मध्यम योजना है, इससे इस समय 2500 हेक्टर सिंचाई हो रही है और इसका रूपांकन क्षेत्र जो है वो 2827 हेक्टर करीब। यहाँ पर जो है 27 लघु सिंचाई योजना है और 4 उद्वहन सिंचाई योजना है और इन सब योजनाओं से 43,740 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है और जिले का निरा जो बोया हुआ क्षेत्रफल जो है 5,17,928 हेक्टर है और इस जिले का अभी सिंचाई प्रतिशत जो है 8.83% है। सिंचाई योजनाओं के बनने के बाद में यहाँ की जिले की बहुत ज्यादा प्रगति हुई है।
1: बेतवा पर कई छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं जो सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन के काम भी कर रहे हैं।
0: पारीछा बांध 1885 में बना था। उत्तर प्रदेश के झांसी हमीरपुर तथा जालौन और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ तथा भिंड जिले इससे लाभान्वित होते हैं।
1: ढुकवा बांध 1909 में बना।
0: माता टीला बांध 1952 में बना।
1: इन बांधों के बारे में बताते हुए अधीक्षण अभियंता श्री बीएम पवार।
3: सन 1885 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारीछा जलाशय का निर्माण कर बेतवा नहर प्रणाली का शुभारंभ किया गया। पारीछा जलाशय की क्षमता में योगदान देने के लिए सन 1909 में ढुकवा बांध निर्मित किया गया। यह योजनाएं उत्तर प्रदेश के झांसी और जालौन जिलों में सिंचाई की सीमित आवश्यकता पूरी करती थी। पहली बार सुनियोजित सिंचाई के लिए सन 1958 में उत्तर प्रदेश शासन ने माता टीला बांध बनाकर एक बहुउद्देशी परियोजना प्रारंभ की। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बेतवा नहर प्रणाली के विस्तार और गुरसराय नहर प्रणाली के निर्माण तथा मध्य प्रदेश में भांडेर नहर प्रणाली से सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि के अतिरिक्त जल विद्युत का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ।

0: राजघाट वर्तमान समय का विज्ञान तीर्थ है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर बन रही ये परियोजना बेतवा का वरदान है।
1: राजघाट परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए चंदेरी के अधीक्षण अभियंता श्री जीपी बिथारिया।
2: ये राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर एक राजघाट बांध का निर्माण हो रहा है, दोनों राज्यों के सहयोग से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। तो राज्य में जो नहरों का निर्माण है वो दोनों राज्य

0: अपने अपने स्रोतों से कर रहा है। इसमें जो नहरें निकलती हैं तो बांध के बाएं तट से एक नहर निकलती है, LBC नहर। इसकी लंबाई करीब 84 किलोमीटर है और नीचे एक ढुकवा बांध है, वहां से दतिया करियर कनाल निकलेगी DCC, जिसकी लंबाई 49.50 किलोमीटर है। तो ये जो अपना बाईं तट नहर है, इससे जो डायरेक्ट इरिगेशन होगा ये 18,433 हेक्टर का होगा, और ये अपने जो दतिया करियर कैनाल है इससे डायरेक्ट इरिगेशन तो कोई नहीं है। टीकमगढ़ में थोड़ा इरिगेशन है, 3,383 हेक्टर। बाकी इसका पानी जो है वो अंगूरी बैराज में डाला जाएगा। अंगूरी बैराज से पावर जनरेशन भी होगा करीब 6.5 मेगावाट, और फिर ये पानी दतिया इरिगेशन कैनाल में डाला जाएगा। तो ये दतिया इरिगेशन कैनाल है, इसकी लंबाई है करीब 31 किलोमीटर, और इससे जो इरिगेशन होगा वो 57,683 हेक्टर इरिगेशन होगा। ये होगा भिंड और दतिया जिले में। इसके साथ ही जो अपनी भांडेर नहर कैनाल है, इसका भी हम लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, और ये करने के बाद 36,083 हेक्टर और इरिगेशन होगा भिंड और दतिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 1,16,000 हेक्टर इरिगेशन होगा, और इस योजना को वर्ष 1996 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
1: आधुनिक विकास यात्रा में बेतवा सांस्कृतिक जीवन की धरोहरों से सराबोर है।
2: बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा ही नहीं, सांस्कृतिक रेखा भी है।
1: बेतवा के किनारे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ सांची है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री शिव कुमार जीव ने।
3: सांची का निर्माण सम्राट अशोक के समय से प्रारंभ होता है। उन्हीं के महान परिश्रम से इस स्थल का उत्थान निरंतर होते रहा और वह चमन के झूले झूमता रहा। यह स्थल विंध्य पर्वत शिखर पर लगभग 300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह दूर से अशोक के समान दिखाई देता है। सम्राट अशोक ने यहाँ चैत्यों, तोरणों, संघारामों, विहारों आदि का निर्माण किया। सांची की शिल्पकला भगवान बुद्ध के जीवन काल की चार विशेष घटनाओं से संबंधित है। ये घटनाएं हैं भगवान बुद्ध का जन्म, उनका बुद्धत्व, धम्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। इन गुप्तकालीन शिल्पकलाकारों ने मूर्तियों का निर्माण वास्तविकता पूर्ण ढंग से किया। सांची के मुख्य चैत्य द्वार पर रही एक विशाल एवं अप्रतिम स्तंभ है, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मुख्य चैत्य में सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेषों को स्थापित किया तथा चैत्य नंबर 2 और 3 में भिक्षु सारिपुत्र एवं महामोग्गलायन के पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखा गया।
1: देशभक्ति तथा स्वाभिमान का गुण बेतवा के पानी का स्थायी अंग बन चुका है।
2: जून 1924 में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने बेतवा के तट के घने जंगलों में शरण ली थी।
1: ओरछा से सटे गांव सातार के श्री गोविंद सिंह तोमर बताते हैं।
4: भगवान दास माहौर झांसी के हैं, वो भी नेताजी हैं। इनसे उनकी मुलाकात थी, वो झांसी आए तो झांसी ने भी उनका मकान घेर लिया। जब पुलिस ने मकान घेर लिया तो ये जनानी भेज करके भागते भागते अब उन्हें का जंगल है, तो रेलवे लाइन की लेके और फिर ओरछा चले गए सीधे।
1: 12 अप्रैल 1930, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, उसी दिन झांसी से भी सत्याग्रह यात्रा शुरू हुई थी, और बेतवा के कछार में लोना मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया गया था।
2: धार्मिक समभाव तथा सहिष्णुता के दृष्टिकोण से बेतवा की यात्रा अद्भुत समन्वय बिखेरती है।
1: बेतवा के ही किनारे देवगढ़ है, जो हिंदू जैन संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है।
2: ओरछा मध्य भारत की अयोध्या है। बेतवा तट पर बसी ये पुण्य नगरी स्वयं में संस्कार तथा साहित्य संस्कृति का अपूर्व उदाहरण है।
1: यहाँ के राम राजा मंदिर के सेवक से लक्ष्मण सिंह गौर बताते हैं।
5: 1631 में तुलसीदास जी ने रामायण जी की रचना की है, इसी दिन उसी नक्षत्र में भगवान

0: जय जोशाय मत्कुर सा महाराज की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा ले आई अवर नदी।
1: बेतवा तट पर सांडिल्य ऋषि की साधना स्थली जलालपुर है। इसी के पास रिडुआ नामक स्थान है जो जैन प्रमुख ऋषभ देव की साधना स्थली रहा है।
2: सैदनगर एक ऐसा स्थान है जहाँ कितने ही मंदिर मस्जिद आसपास बने हैं। यहाँ शंख ध्वनि के साथ पूजा आरती भी होती है, अजान भी होती है। इसे सिद्धनगर भी कहते हैं। रक्तदंता मारण मोहन की सिद्ध स्थली है सैदनगर,
1: जहाँ दुर्भाग्य से कुछ नदियाँ अपनी भौगोलिक संरचना के कारण कई समस्याएं पैदा करती हैं। वही बेतवा अपने उद्गम से यमुना में समागम तक 3-4 किलोमीटर की यात्रा में केवल प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, उत्साह और देश प्रेम बांटती है। यहाँ तक कि इसके आसपास कई समस्याओं के निदान भी खोजे गए हैं।
2: जैसे मुगावली 1977 में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सैकड़ों डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया तो उन्हें सुधारने के लिए मुंगावली की खुली जेल में रखा गया था।
1: मुंगावली जेल के सहायक जेलर श्री आर आर रॉय का कहना है,
3: देखिए मुंगावली में जो खुली जेल खोली गई इसके पीछे सन 1973 में जब चंबल के आत्मसमर्पित डाकुओं ने जयप्रकाश के सामने आत्मसमर्पण किया तो उनको समाज की मुख्य धारा में पुनः सम्मिलित करने हेतु और उनकी विशेष मांग पे उस खुली जेल की स्थापना 1973 में की गई। दूसरी जेलों में यदि उनका चाल चलन अच्छा रहा है, उनकी केस हिस्ट्री कोई वो पेशेवर हत्यारा न हो इस तरह का रहा हो तो आजकल इसी आधार पर खुली जेल में कैदी भेजे जाते हैं।
1: बेतवा का संपूर्ण क्षेत्र सस्य श्यामला की वानस्पतिक अनुभूति है। अनगिन पेड़ पौधे, वन जंगल इसके तटों पर फैले पड़े हैं,
2: जैसे सागौन, शीशम, थौ, साज, तेंदू, महुआ, नीम, बबूल,
1: आम, जामुन, आंवला, उमर, अचार, बेर, मकोरा, बेल, नींबू और करौंदा।
2: बेतवा के उपजाऊ क्षेत्र में अमरूद, संतरा, मौसम्बी, कटहल, सीताफल, अंगूर इत्यादि भी पैदा किए जाते हैं।
1: इसकी जमीन में कच्चे होने पर खट्टे लगने वाले तथा पकने पर मीठे लगने वाले फल खासकर अच्छी पैदावार देते हैं।
2: आयुर्वेद के लिए बेतवा घाटी वरदान है। आयुर्वेद में उपयोग के लिए पौधों की लंबी लंबी श्रृंखला है।
1: अर्जुन, अशोक,
2: कचनार, अमलतास,
1: खैर, भकायन,
2: बहेला, बिलवादी जैसे बड़े वृक्षों के अलावा शंखाहुली, नागरमोथा, कष्टकारी,
1: केवंश बीज, भारंगी, गोखरू,
2: उदयफूल, नाय, इंदौस,
1: बच्ची, नरगुंडी, इंद्रजौ,
2: आक, धतूरा, जवासा
1: और हरजरू, इमलौसा, फूलकर जैसे छोटे पौधे भी हैं।
2: विकास के क्रम में हमारे बीच से ये सुख धीरे धीरे घट रहा है। कभी बेतवा के पास घने जंगल थे पर अब सब क्षीण होता जा रहा है।
1: पर हाँ, उम्मीद बाकी है क्योंकि आज भी जब सिरीप, दुधी, काग, कदम की फूलने के दिन आते हैं तो बेतवा रंग और गंध से भर उठती है।
2: रंग गंध की झलक हमें ये विश्वास दिलाती है कि आज बेतवा अपने अतीत के सांस्कृतिक, कलात्मक, धार्मिक, वानस्पतिक वैभव तथा आधुनिक विकास के संक्रमण पर जहाँ खड़ी है वहां से आगे भी वो बीच का रास्ता निकाल ही लेगी। लेकिन इसके लिए हमें मंडीदीप और विदिशा में हो रहे औद्योगिक विकास से उत्पन्न संभावित खतरों को पहले जांच लेना होगा।
1: इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के वरिष्ठ शोध अधिकारी डॉक्टर एस एम मिश्रा।
4: औद्योगिक प्रदूषण यहाँ पर कुछ स्थानों पर अधिक पाया गया है, जिसमें एक मंडीदीप और दूसरा विदिशा है। यदि कहा जाए कि प्रदूषण की समस्या इतनी विकराल हो गई है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, यह तो कहना असत्य होगा। लेकिन यदि हम इनमें में से इन समस्याओं से ऊपर उठ करके नदी का एकीकृत योजना शुरू से प्रारंभ से जहाँ से कि नदी अपना स्वरूप लेती है वहाँ से और अंत तक हमीरपुर में मिलने के पूर्व तक अगर पूरी योजना बनाई जाए तो शायद यह संभव है कि हम अपने इन प्रयासों के कारण इस नदी को प्रदूषण से बचा सकते हैं।
1: एक आदर्श उद्योग भी बेतवा के किनारे अपनी पृथक पहचान बनाए हुए है।
2: ये है चंदेरी का हथकरघा उद्योग।
5: चंदेरी साड़ी को धन।

0: बेटवानी हमें सूर्यकांत मणि, सुलेमानी पत्थर, गोमेदक, दूधिया पत्थर तथा बिल्लौर जैसे नगीने भी दिए हैं। हमें भी सोचना है हमारे पास क्या है बेटवा को देने के लिए।
1: भ्रम न हो न संशय, क्योंकि भ्रम अंततः ऐसी चूक में बदल जाते हैं जिन्हें ठीक कर पाना संभव नहीं होता।
0: जैसे बेटवा धसान संगम पर दशरथ को हुआ था, जल भरते श्रवण को मृत के भ्रम में बाण से मार डाला था।
1: इसीलिए हमें अपनी दृष्टि स्पष्ट रखनी होगी
0: और अक्षुण्य रखनी होगी। खिरी बहेड़ा से पत्योरा तक बेटवा की स्थायी संस्कृति,
1: खिरी बहेड़ा से भोजपुर,
0: रायसेन,
1: सांची,
0: विदिशा,
1: गंज बासौदा,
0: राजघाट,
1: बसई,
0: माता टीला,
1: ओरछा,
0: हमीरपुर होते हुए
1: अपने संपूर्ण क्षेत्र को तीर्थि संपन्न बनाती, सुसंस्कृत करती बेटवा अपने अभीष्ट को पत्योरा में प्राप्त

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

शिव महिमा, महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा।

शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि देवी गंगा शिव पुत्र उत्पत्ति के बीज के तेज और ताप से विचलित हो उठी थी। नारद मुनि के परामर्श से उन्होंने ये बीज अपने ही जल में प्रवाहित कर दिया। बीज सरकंडे के खेत में जा उलझा, उससे 6 मुख

0: वाला एक अति दिव्य शिव पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रकृति की कलाओं और कृतिकाओं के आग्रह पर देवी पार्वती और देवाधिदेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को कुछ वर्षों के लिए उन्हें सौंप दिया। कार्तिकेय जन्म से तारकासुर भयभीत हो उठा। दैत्य साम्राज्य बचाए रखने के लिए दैत्य माता दिति ने सेना का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। असुरों के पुनः बढ़ते अत्याचारों के कारण प्रभु शिव शंकर ने पुत्र कार्तिकेय को वापिस बुलाने का निर्णय लिया। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूद जी, देवाधिदेव के इस आकस्मिक निर्णय से कृतिकाएं तो बहुत दुखी हुई होंगी।
2: विप्रवर शौनक जी,
1: तीव्रता से परिवर्तित होते घटना चक्र से अनभिज्ञ कृतिकाएं तो बालक कार्तिकेय पर अपना संपूर्ण मातृत्व न्यौछावर करने में व्यस्त थी। उन्होंने कुमार कार्तिकेय को ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, यहां तक कि युद्ध कला सिखाकर महादेव के ही कथन की सत्यता प्रमाणित की थी। महादेव के कथन की सत्यता? आप किस कथन के विषय में कह रहे हैं सूत जी?
2: स्मरण करें शौनक जी, जब महादेवी पार्वती ने कुमार को कृतिकाओं को सौंपे जाने पर आपत्ति प्रकट की थी, तब स्वयं महादेव ने कृतिकाओं के कौशल की सराहना की थी। महादेवी को समझाया था कि वे कुमार का उत्तम लालन पालन करने में सक्षम हैं।
1: हे महाभाग, प्रकृति की सक्षमता पर कौन प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? फिर क्या हुआ? मुनि नारद और नंदी के आगमन पर कृतिकाओं की क्या प्रतिक्रिया हुई?
2: शौनक जी, अचानक इतने विशाल दलबल की उपस्थिति से पहले तो कृतिकाएं भयभीत हो उठी, परंतु तुरंत ही भय का स्थान क्रोध ने ले लिया।
3: क्या देवाधिदेव को हमारे वचन पर विश्वास नहीं था जो उन्होंने बलपूर्वक कुमार को हमसे छीनने के लिए आपको भेजा है?
4: बल? कैसा बल देवी कृतिका?
3: आयुधों से लैस ये रथ, अस्त्रों से सुसज्जित ये सहस्त्रों शिवगण।
5: नारायण नारायण। कृतिकाओं, लगता है आप महाप्रभु के स्वभाव से अपरिचित हैं। अकारण बल प्रयोग में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं है, और वो भी स्त्रियों के विरुद्ध। नारायण नारायण, वो तो कदापि नहीं।
3: तो फिर यह विशाल सैन्य बल किस लिए?
4: देवी, ये सहस्त्रों शिवगण अपने कुमार का स्वागत करने आए हैं। शस्त्र इसलिए साथ लाए हैं कि कहीं मार्ग में असुरों से भेंट ना हो जाए।
3: परंतु अचानक देवाधिदेव को कुमार कार्तिकेय की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? वे यहाँ अति प्रसन्न हैं।
5: हम जानते हैं कृतिकेय, कुमार यहाँ प्रसन्न ही नहीं, आनंद से भी हैं। यदि वो आप ही के पास रहते तो देवी पार्वती और महादेव को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु लोक कल्याण हेतु उनका लौटना आवश्यक हो गया है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका जन्म हुआ है, देवी, उसे पूरा करने का समय आ गया है।
4: और यही शिवाज्ञा है।
6: माताओं, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य होता है।
3: पुत्र कार्तिकेय, क्या पिता की आज्ञा के समक्ष माता की ममता, उसका स्नेह कोई महत्व नहीं रखती?
6: माते, आप ही की शिक्षा है कि हर वस्तु का अपना महत्व अवश्य होता है, परंतु ये समय की मांग पर निर्भर होता है कि कब कौन सी वस्तु अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। इस समय लोक कल्याण के लिए पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है।
5: नारायण नारायण। तितिकाओ, धन्य हैं आप, आपसे ऐसी ही शिक्षा की अपेक्षा थी। आपको तो अपने इस दत्तक पुत्र पर गर्व होना चाहिए।
3: हम सब जानती थीं कि तुम हमारे पास महाप्रभु की धरोहर हो और उनका हम पर महा उपकार है। इस धरोहर को उनके मांगे जाने पर लौटाने के लिए हम वचन

0: है। जाओ पुत्र कार्तिकेय, पिता के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करो, किंतु हमें भी स्मरण रखना पुत्र।
1: माते, आपने हमें पाला पोसा है और पालन करने वाली माता का स्थान जन्म देने वाली माता से भी उच्च होता है। आपका स्मरण हम हर पल करते रहेंगे। हमें आशीर्वाद दें, जिस कार्य हेतु हम जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले।
0: विजयी भव पुत्र कार्तिकेय, आयुष्मान भव।
2: कुमार कार्तिकेय की
3: जय।
2: देवी कृतिकाओं की
3: जय।
2: शिल्प पुत्र की
3: जय।
4: दैत्य माता दिति की जय।
0: दैत्य सेनापति, इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? क्या समाचार लाए हो?
4: नारद और नंदी शिवपुत्र कार्तिकेय के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देवता भी वहाँ एकत्र हो चुके हैं।
0: तो इसमें चिंता की क्या बात है? तारकासुर को वरदान है कि वह शिवपुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के हाथों नहीं मारा जा सकता, और शिवपुत्र अभी बहुत छोटा है।
5: एक छोटी सी चींटी ही विशाल गजराज के मृत्यु का कारण बन जाती है दैत्य माता।
0: दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम बहुत समय से देख रहे हैं कि दैत्यों के प्रति आपके व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा है। आप उनका हित सोचने के स्थान पर उनसे विमुख होते जा रहे हैं।
5: यदि मैं अपने शिष्यों से विमुख हो गया होता तो उनकी प्राण रक्षा के उपाय ना सोच रहा होता। विशेष रूप से अपने प्रिय शिष्य तारकासुर की प्राण रक्षा का उपाय।
0: तो क्या उपाय सोचा आपने?
5: क्षमा। क्षमा ही एकमात्र उपाय बचा है।
0: क्षमा? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी दैत्य गुरु।
5: शिव से क्षमा मांगने पर ही तारकासुर की प्राण रक्षा संभव हो सकती है।
0: दैत्यों के विरोधी देवता दैत्यों को ही क्यों क्षमा करेंगे?
5: दैत्य माता, देवता कभी अपने गणों में भेदभाव नहीं रखते। सुर असुर, मानव चर अचर, सब उनके गण हैं। और फिर शिव की तो गोत्र ही क्षमा है। मुझे स्मरण है शिव पार्वती विवाह का वो प्रसंग, जब स्वयं ब्रह्मा ने उन गोत्रहीन को गोत्र प्रदान की थी।
6: ये क्या है ब्रह्मा जी? क्या कहना है ब्रह्मा जी? क्षमा गोत्र ब्रह्मा जी के गोत्र, ये कैसे हो सकता है?
5: दैत्य माता दिति, इसके पश्चात उन्होंने क्रोध में आकर भस्म किए गए कामदेव को भी क्षमा करते हुए उन्हें पुनः जीवित कर दिया।
0: एक देवता ने दूसरे देवता पर उपकार किया, परंतु दैत्यों से देवता घृणा करते हैं, और हम दैत्य देवताओं से घृणा करते हैं। वे पग पग पर हमारे अपराधी हैं। दैत्य साम्राज्य में क्षमा नाम का शब्द नहीं होता शुक्राचार्य। हम मात्र दंड देते हैं अपने विरुद्ध किए गए कुकर्मों और अपराधों का। देवताओं ने हमारे विरुद्ध अपराध ही अपराध किए हैं। वे हमारे दंड के भागी थे, हैं और रहेंगे।
5: और दैत्यों के अपराधों का दंड उन्हें कौन देगा?
0: कैसे अपराध? कौन से अपराध?
5: साम्राज्य विस्तार के लिए निरीह निरापराध प्राणियों की हत्याएं, नारियों का बलात्कार, शिशुओं का हृदय भेदन।
0: साम्राज्य विस्तार की शिक्षा आप ही ने हमें दी है शुक्राचार्य।
5: परंतु निरीह जीवों को सताने की शिक्षा कभी नहीं दी। उच्च कोटि के ब्राह्मण होने के पश्चात भी हम दैत्यों के गुरु बने। हमारा समान अधिकार में विश्वास था, इसीलिए हम दैत्यों को भी उनके अधिकार दिलाना चाहते थे। परंतु दैत्यों ने अहंकार में आकर उस अधिकार का दुरुपयोग किया है, हमारी शिक्षा का अपमान किया है।
0: दैत्यों की निंदा करके तुम हमारा अपमान कर रहे हो शुक्राचार्य। जाओ, हम तुम्हें दैत्य गुरु के पद से हटाते हैं। हमारे सम्मान में तो स्वयं शिव भी शीघ्र अपना पद त्यागने वाले हैं। ऐसे में आपका मूल्य ही क्या है?
5: अरे मूढ़ मत दीदी, तू दैत्य वंश का नाश करने पर तुली है। तेरे नेत्रों पर अहंकार और दंभ की पट्टिका बनी हुई है। तू सृष्टि

0: रचयिता का स्थान लेने का स्वप्न देख रही है? देख, अवश्य देख, परंतु सृष्टि रचयिता और पालक की संहार शक्ति भी देख। हम जा रहे हैं।
1: जाइए दत्त गुरु, जाइए। तारकासुर।
2: जी दत्त माता।
1: विगत में देवताओं की श्रेष्ठता के बारे में फैले इस भ्रम को तुम अपने बाहुबल से तोड़ चुके हो। अब देवताओं के भी देवता उस शिव के प्रति फैले भ्रम को समाप्त करने का समय आ गया है।
2: परंतु दत्त माता,
1: क्या हिरण्यकशिपु का वंशज वज्रांग पुत्र तारकासुर एक छोटे से बालक से भयभीत हो उठा है?
2: नहीं दत्त माता, नहीं। हम
1: या देवताओं को सदा परास्त करने वाला तारकासुर युद्ध कला भूल गया है?
2: दत्त माता, आप
1: तो निश्चय ही अपनी माँ के दुग्ध के स्थान पर तुमने जल का पान किया होगा।
2: दत्त माता, हमारी माता के दुग्ध का अपमान ना करें।
1: अपमान हम नहीं तुम कर रहे हो तारकासुर। एक दैत्य माता के दुग्ध का मूल्य चुकाने के अवसर पर तुम पीछे हट रहे हो।
2: बस बस, और कुछ ना कहिए, और कुछ ना कहिए। अपने प्राणों पर खेल कर भी ये तारकासुर अपनी माँ के दुग्ध को अपमानित नहीं होने देगा। दैत्य सेनापति,
3: आज्ञा असुरराज।
2: समस्त दैत्य सेना को आदेश दो, वो वही सागर संगम पर एकत्र हो। कार्तिकेय को हम वही युद्ध के लिए ललकारेंगे।
3: जैसी आज्ञा दैत्यराज।
2: दैत्य माता, आशीर्वाद दे कि हम शिव पुत्र के छहों शीश आपके चरणों में अर्पित कर दे। दैत्य माता, आपके चरणों में अर्पित कर दे।
1: ऐसा ही होना चाहिए तारकासुर।
2: सेनापति प्रस्थान।
4: दैत्य
5: माता दिति की
4: जय।
5: दैत्य माता दिति की
4: जय। त्रिलोकी स्वामी तारकासुर की
5: जय।
4: त्रिलोकी स्वामी तारकासुर की
5: जय। शिव पुत्र कार्तिकेय की
4: जय हो।
5: शिव पुत्र कार्तिकेय की
4: जय हो।
5: शिव पुत्र कार्तिकेय की
4: जय हो।
6: महादेव महादेवी की
4: जय हो।
6: महादेव महादेवी की
4: जय हो।
6: महादेव महादेवी की
4: जय हो।
7: विष्णु हरि, शिव पुत्र के दर्शन कर मन आनंद से भर उठा है। देखिए ना, रथ पर आरूढ़ षडानंद कार्तिकेय कैसी अद्भुत किरणों से प्रकाशमान हो रहे हैं।
8: हाँ विधात, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं भगवान शिव इस बालक में अवतरित हुए हों।
7: उधर माता पार्वती और महाप्रभु के मुखमंडल पर भी तो पुत्र मिलन के इस अवसर पर स्नेह का प्रकाश चमक उठा है।
8: अरे देखिए विधात, रथ से उतरकर कुमार कार्तिकेय इसी ओर आ रहे हैं।
9: प्रणाम पिताजी। प्रणाम माते।
10: चिरंजीवी भव पुत्र कार्तिकेय।
9: प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम श्री विष्णु हरि।
10: आयुष्मान भव।
9: पिताजी, मार्ग में भ्राता नंदी कह रहे थे कि आपने किसी विशेष लोक कल्याण कार्य के लिए हमें स्मरण किया है। आज्ञा दे पिताजी, हमें क्या करना होगा?
10: पुत्र कार्तिकेय, तुम्हें सहस्रों वर्षों से चले आ रहे तारकासुर के अत्याचारों का अंत करना है, उसका वध करना है। जाओ, देवताओं और शिव गणों की सेना का नेतृत्व करो और विधि के इस विधान को पूरा करो।
11: परंतु हे नाथ, पुत्र कार्तिकेय का अभी तो आगमन हुआ है, आप तुरंत ही उन्हें रणभूमि में भेज रहे हैं, थोड़ा विश्राम तो करने दें।
10: देवी पार्वती, विश्राम का एक एक पल तारकासुर के बल को प्रोत्साहित करेगा।
11: स्वामी, ये भी तो देखें, कुमार अभी कितने छोटे हैं, उस अति बलशाली राक्षस का सामना कैसे कर पाएंगे?
7: देवी पार्वती,

0: पुत्र गणेश तो आपके शरीर के मैल से उत्पन्न हुए थे और नवजात थे, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था। स्वयं देवाधिदेव ही उन्हें पराजित कर पाए थे।
1: फिर देवी, कार्तिकेय तो स्वयं शिव पुत्र हैं और बड़े भी हो चुके हैं, उनके बल पराक्रम पर तो

0: कुमार कार्तिकेय को दिव्य अस्त्र भेंट कीजिए और पुत्र मैं तुम्हें अपना शूल पिनाक और फरसा प्रदान करता हूँ।
1: ब्रह्मा का यज्ञोपवीत धारण करो पुत्र कार्तिकेय।
2: पुत्र कार्तिकेय, मैं विष्णु तुम्हें किरीट और सुदर्शन चक्र भेंट करता हूँ।
3: कुमार, इंद्र की ओर से ये एरावत हाथी और वज्र स्वीकार करें।
4: पुत्र कार्तिकेय, अपनी माता से तुम शक्ति को ग्रहण करो।
0: हे देवताओं, कुमार के नेतृत्व में अभीष्ट प्राप्ति की ओर अग्रसर होइए। नंदिकेश्वर, वीरभद्र,
5: आज्ञा स्वामी।
0: कुमार कार्तिकेय को हमने आपके संरक्षण में दिया।
5: हम धन्य हुए देवादिदेव।
2: हे माते पार्वती, हे पिताजी, हमें आशीर्वाद दे कि तारकासुर का शीश हम आपके चरणों में लाकर अर्पित कर सके।
0: विजयी भव पुत्र,
4: आयुष्मान भव पुत्र,
5: प्रस्थान हो।
6: प्रस्थान।
7: कुमार कार्तिकेय की
6: जय।
7: शिव नंदन कार्तिकेय की
6: जय।
7: तारकासुर संहारक कुमार कार्तिकेय की
6: जय।
8: अपने प्राण बचा तारकासुर, हम आ रहे हैं।
7: अरे अत्याचारी तारकासुर, तेरा अंत आ गया है।

0: दैत्यराज तारकासुर, वो देखिए उस दिव्य रथ पर बैठा छह मुखी बालक ही कार्तिकेय है।
1: क्या
2: वो है कार्तिकेय? अरे ये बालक तो हमारे पग की धूली के बराबर भी नहीं है, ये हमें क्या मारेगा? हम व्यर्थी भयभीत हो उठे थे। अरे ब्रह्मा, अरे विष्णु, ये किस छह अंगुल के छह मुखदारी बालक को लेकर हमारे वध की इच्छा से यहाँ आए हो? ये तो हमारी मुष्टि का एक प्रहार भी सहन नहीं कर पाएगा।
3: अरे अहंकारी तारकासुर, क्या तू देख नहीं रहा? तेरे समक्ष तेरा ही मांगा वरदान खड़ा है। यही वह शिव पुत्र है जिसके हाथों तूने अपनी मृत्यु मांगी थी। तेरी वही हार्दिक इच्छा पूर्ण करने के लिए कुमार कार्तिकेय तेरे साक्ष है।
2: ये हमें क्या हानि पहुंचाएगा? मैं अकेला ही इससे युद्ध करूंगा। मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों, लोकपालों तथा विष्णु जिनके नायक हैं, उन सभी देवों को मार डालूंगा।
4: आक्रमण!
5: हरि स्वामी कार्तिकेय, मुझ सेवक वीरभद्र के होते हुए आप युद्ध करें, ये मुझे शोभा नहीं देता। मैं अभी तारक को मारता हूँ।
4: आक्रमण!
3: श्री हरि, वीरभद्र ने त्रिशूल से तारकासुर को धराशायी कर दिया है।
6: परंतु ये क्या, क्षण भर मूर्छित रहने के पश्चात वो पुनः उठ खड़ा हुआ है? अरे ये तो रोम हर्षक युद्ध हो रहा है।
3: हाँ, मानो बुध और मंगल युद्ध कर रहे हैं। अरे तारकासुर ने अपने सिर देव सेना पर छोड़ दिए हैं। देवता आहत होकर इधर उधर भाग रहे हैं।
6: हाँ? तारकासुर, मैं आया।
3: विष्णु हरे, ये आप

0: स्वयं लक्ष्मीपति विष्णु युद्ध भूमि में उतर आए हैं। स्वागत है। वर्षों से आपको युद्ध का अभ्यास ना हुआ होगा, आइए कुछ युद्धाभ्यास करा दूं। मेरा तो एक पद घात ही आपको युद्ध भूमि छोड़ने पर विवश कर देगा।
1: अरे ये क्या सूर्यदेव, श्री विष्णु ने अपनी गदा उठा ली है,
2: परंतु तारकासुर ने त्रिशिख बाण मारकर उसके दो भाग कर दिए हैं इंद्रदेव।
1: अरे अब भगवान ने शारंग धनुष उठा लिया है, वो तारकासुर ने भी भगवान पर बाणों की वर्षा कर दी है।
3: अरे ये क्या, श्री हरि मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े हैं।
1: परमपिता परमपिता कुछ कीजिए, अन्यथा हमारी पराजय निश्चित है।
4: हाँ। पुत्र कार्तिकेय,
5: आज्ञा ब्रह्मदेव।
4: मेरे वरदान के कारण तारकासुर सभी के हाथों अभेद्य है, उस पर मात्र तुम ही विजय पा सकते हो। जाओ पुत्र, तारकासुर के आतंक का अंत कर दो।
5: आपकी आज्ञा शिरोधार्य है परमपिता।
1: अरे ये क्या, कुमार कार्तिकेय रथ से उतरकर पैदल ही तारकासुर की ओर बढ़ रहे हैं।
2: एक परम कांतिमान उल्का की भांति उन्होंने अपनी शक्ति को उठा लिया है।
3: दैत्यराज दैत्यराज कार्तिकेय इस ओर आ रहा है।
0: अरे मूढ़ देवताओं, ये किस बालक को तुमने मुझसे युद्ध करने को प्रेरित किया है? तुम्हें लज्जा नहीं आती? स्वयं तो सहस्रों वर्षों से मुझे पराजित कर नहीं सके, अब एक निरीह बालक को अपना अस्त्र बनाया है। जा हे अबोध बालक, इन देवताओं के छल में ना, अपने प्राण बचा, मैं तुझे नहीं मारूंगा।
5: परंतु पिता की आज्ञा से मैं तुझे अवश्य मारूंगा।
6: आज तेरे आतंक का और तेरा अंत आ गया है। इस युद्ध में कुमार कार्तिकेय की विजय सुनिश्चित है। एक बार फिर अपने कर्मों को कर्मों का स्मरण कर ले और शिव पुत्र के हाथों नरक गामी हो। शिव पुत्र के हाथों नरक गामी हो, नरक गामी हो, नरक गामी हो, नरक गामी हो।

0: स्वर्ग के स्वामी को कौन नरकगामी बना सकता है? अरे मति भ्रष्ट बालक, ले बच, तारकासुर के प्रहार से बच।
1: अरे दुष्ट तारकासुर, ले अपना अंत।
2: देखिए, कुमार कार्तिकेय ने शक्ति द्वारा तारकासुर का वध कर दिया। अरे
3: पाही पाही, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पाही पाही, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
2: अरे कितने ही असुर प्राण रक्षा के लिए कुमार के चरणों में लौट रहे हैं और सहस्त्रों पाताल में घुसे जा रहे हैं। अरे ये क्या, कुमार परम पिता ब्रह्मा और श्री विष्णु के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं।
4: परम पिता श्री विष्णु, माता पिता और आप सबके आशीर्वाद से मैंने अपना नियत कार्य संपन्न किया।
5: पुत्र कार्तिकेय।
4: पिताजी आप?
5: पुत्र, तुम्हारी विजय का समाचार सुनकर हम तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा न कर सके। कार्तिकेय, माता पिता का आशीर्वाद तो सदा अपनी संतान के साथ रहता है। ये संतान का कर्म है जो उस आशीर्वाद को फलीभूत करता है। कर्म की अनुपस्थिति में आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं होता।
3: प्रभु शिव शंकर की।

0: हरी की
1: जय।
0: कुमार कार्तिक की
1: जय।
2: और परम ज्ञानी शौनक जी, इस प्रकार सहस्रों काल से चले आ रहे दैत्य आतंक का कुछ समय के लिए अंत हो गया।
3: कुछ समय के लिए अंत हो गया, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा महाभाग सूत जी।
2: शौनक जी, अच्छे बुरे सत्य असत्य के बीच संघर्ष तो एक चिरंतन प्रक्रिया होती है। ये तो समय समय की बात है कि कब कौन कितने काल के लिए दूसरे पर हावी हो जाता है।
3: तो क्या तारकासुर के पश्चात और भी बलशाली राक्षस उत्पन्न हुए?
2: हाँ, तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष उत्पन्न तो हो चुके थे, परंतु उनके आतंक का आरंभ होने में अभी समय था।
3: तो इस बीच क्या हुआ सूत जी, वो बताइए।
2: ये बताने में भी थोड़ा समय है, इस प्रसंग को अगली भेंट में आगे बढ़ाएंगे।
4: श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता चतुर्थ खंड के 3rd से 12th अध्याय तक से लिया गया था।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

हुने तुसी सुन रहे सी सदा बहार गीत मीडियम वेब 347.6 मीटर या 873 किलो हर्ट्स टीआरएम 864 किलो हर्ट्स एफएम 100.8 मेगा हर्ट्स एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा यह जलंधर केंद्र है। शाम दे 4:30 बज रहे ने। हुण असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलदे आं जित्थों तुसी शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसाकर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं।

0: जासु बचन रवि कर निकर।
1: राम नाम मणि दीप धरु जीह देह हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरिउ जो चाहसी उजियार। श्रोताओ, मैं अकिंचन तुलसीदास अपने मुख रूपी द्वार की देहली पर राम नाम का मणिदीप रखकर आपके सामने आया हूं। सो क्यों? इसलिए कि इस अनुपम दीपक ने मेरे भीतर और बाहर जो उजाला कर दिया है, उस उजाले में मैं एक अलौकिक दृश्य देख रहा हूं। देख रहा हूं एक विशाल मानस, ऐसा सरोवर जिसमें मधुर मनोहर मंगलकारी यश का निर्मल और अथाह जल फैला है। किसका है ये यश? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बात ऐसी हुई कि मुनियों ऋषियों और महाकवियों द्वारा वर्णित इस कथा को मैंने अपने गुरु के मुख से सूकर क्षेत्र नामक तीर्थ में सुना था, किंतु समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे हूं अचेत। मेरे गुरु ने कृपा करके बार बार मुझे कथा सुनाई और ज्यों ज्यों मेरी छोटी मति में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, त्यों त्यों मेरे मन में उजाला सा फैलने लगा। मन में ये संतोष उपजा कि उस लीला को मैं भाषाबद्ध कर पाऊंगा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजुन मानि है जिन्ह कै विमल विचार। हे श्रोताओ, आज संवत 1631 मधुमास चैत्र की नवमी तिथि भौमवार है। आज इसी दिन सादर शिवजी को सिर नवाकर श्री हरि के चरणों में शीश रखकर मैं राम की गुणगाथा का आरंभ कर रहा हूं। शुक्ल पक्ष के अभिजित नक्षत्र की इस तिथि का दोपहर का समय ही समग्र चर अचर जड़ और चेतन प्राणियों को हर्षित करने वाली, जन जन के सुख की मूल, सभी लोगों को विश्राम देने वाली पावन राम जन्म तिथि है। भगवान ने जन्म क्यों लिया, सुनिए। दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित दीनहीन गाय के रूप में धरती की रुदनपूर्ण विनती सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवगण भगवान की स्तुति करने लगे।

0: श्रोताओं, भूमि और सुरगणों को दुखी हुआ जान, शोक संदेह को हरने वाली अंतरिक्ष की निस्सीम गुफाओं को मानो गुंजायमान करती हुई गंभीर गगन गिरा सुनाई पड़ी।
1: जनी डर पहुं मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्ही लागी धरी हूं नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा। हरि हूं सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय।
0: श्रोताओ, चलिए अयोध्या नगरी। रघुकुल मणि, धर्म धुरंधर, गुण निधि, ज्ञानी, हृदय में सारंग धारण करने वाले, भगवान की भक्ति में लीन महाराजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।

0: अंतिम आहुति देता हूँ। इसके बाद एकाग्र चित्त ध्यान लीन होकर इसी स्थान पर बैठे रहे।
1: गुरुदेव, क्या कौशल्या को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता?
2: क्यों राजन?
1: इसलिए कि एकाग्रचित होते होते मुझे लगता है कि मैं और कौशल्या हम नहीं हैं, कोई और दंपति है। और युगों पूर्व कल्प कल्पांत से पहले कहीं दूर घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं।
0: शांत राजन, नेत्र मूंदिए, यज्ञ पुरुष अग्निदेव का ध्यान कीजिए।
1: हाँ, कर रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ। आंखें मूंदते ही गुरुवर वहीं ध्यान चला जाता है। यही विधि बीते बरस खट सहस नीर आहार संवत सप्त सहस पुनी रहे समीर आधार।
2: ये तो शुभ लक्षण है राजन। युगों पहले की कोई तपस्या की स्मृति का उमड़ना शुभ लक्षण है।
1: लेकिन कौशल्या,
2: बुलाइएगा लेकिन अभी नहीं।
0: अब मैं समग्र समझा की ये आहुति अग्निदेव को समर्पित करता हूं।

0: आंखें खोलिए राजन, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने।
1: तो राजन, वशिष्ठ मुनि के वचन, श्रृंगी ऋषि की मंत्र साधना और तुम्हारी भक्ति भावपूर्ण याचना पूरी होगी। यह लो, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई।
2: मैं क्या कहूं भगवान, परमानंद में मगन हूं और हरस में हृदय समाए। आपकी असीम अनुकंपा के लिए दंडवत करता हूं। आपके दिव्य दर्शन से मैं,
0: अरे अग्निदेव तो अदृश्य हो गए राजन, आपकी मंगल विधि संपूर्ण हुई। वशिष्ठ मुनि, मैं आपकी अतिथिशाला जाकर वहां विश्राम करूंगा।
3: अब बुलाइए महारानी कौशल्या को राजन।
2: प्रतिहारी, पटरानी को सागर यहां ले आओ।
4: जो आज्ञा।
3: अग्नि देवता के दिए हुए इस चरु में जो पायस है उसका आधा भाग

0: इस स्वर्ण पात्र में अपने ही हाथों डाले राजन।
1: जो आ गया।
2: आर्य पुत्र, आपने मुझे ही बुलाया, किंतु कैकेयी और सुमित्रा भी तो वातायन के उस ओर पहुंचाने का आदेश दे।
1: ठहरो कौसल्या, बैठो। सुनो, जब श्रृंगेरी ऋषि द्वारा अंतिम आहुति देते समय मैं उनके आदेशानुसार आंख मूंद कर ध्यान मग्न होने लगा तो मुझे जान पड़ा कि युग युगों पहले किसी बीहड़ जंगल में तुम और मैं न जाने कैसी अंतहीन तपस्या में लीन बैठे हैं।
2: हाँ, हाँ अरे पुत्र, आंखें मूंदते ही वो दृश्य इस क्षण मेरे भी सामने स्पष्ट होता जा रहा है। और फिर हम दोनों की तपस्या के बाद मांगो मांगो बरु भय नभ पानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी।
1: तब हम दोनों ने कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो ये बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि
2: जो भसुन दिमन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, देख ही हम सो रूप परिलोचन, कृपा करो परतारित मोचन।
1: आहा, क्या अलौकिक रूप था वो, उन चरणों की शोभा, पद राजीव बरने नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसही जिन माही।
0: हे राजन, आप दोनों उस जन्म में मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे, आज आप दोनों के उस महातप और भगवान के वरदान के फलस्वरूप।
1: वरदान? ओह, हमने कहा एक लाल सा बड़ उर माही, सुगम अगम कहीं जात सुनाई।
2: तुम्हारी देत अति सुगम गुसाई, अगम लागे मोहिनी जी कृपनाई।
1: तानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सद्भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव।
0: और वो वर मिला, लेकिन वो रूप भूल जाइए महाराज, भूल जाइए आप अब।
2: कैसे भूल जाए गुरुवर, भगवान ने स्वयं कहा था, मा तु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटही अनुग्रह मोरे।
0: देवी, भगवान स्वयं भुला देंगे और अवसर पड़ने पर स्वयं याद दिला देंगे, यही तो भगवान की लीला होने जा रही है। देवी, अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त इस पायस खीर का आधा भाग अपने पति से सादर ग्रहण करें। उठाइए ये स्वर्ण पात्र, राजन डालिए चरु में से पायस, धीरे धीरे, हाँ बस बस। प्रतिहारी, देवी कैकेयी और सुमित्रा को बुलाओ। आइए देवी कैकेयी और आइए देवी सुमित्रा, इधर बैठे। देवी कैकेयी, चरु में से आधा भाग लीजिए, राजन अब शेष पायस को देवी सुमित्रा के स्वर्ण पात्र में डालिए। देवियों, इस दैवी प्रसाद को अब आप अंतपुर में अपने अपने कक्ष में जाकर प्रसन्न वदन होकर पान करें।
3: इसी विध गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, मंदिर में सब राजे ही रानी, शोभा सील तेज की खानी। और जब चैत्र मास नवमी तिथि भोमवार को भगवान का जन्म हुआ, तब समस्त देवताओं के समूह को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे, गंधर्वों का गान हुआ, सुमनांजलियों से विमल गगन छा गया, और उसके बाद

निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो आज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। कैकेयी के भरत शत्रुघ्न और सुमित्रा के लक्ष्मण के जन्म होने के उपरांत चारों भाइयों की शिशु लीला मैं अकिंचन दासानुदास तुलसीदास भला कैसे करूं उस बाल लीला का वर्णन। बस सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। नामकरण हुआ चूड़ाकर्म संस्कार उपनयन और गुरु से शिक्षा। श्रोताओं

0: ये सब चरित मैंने गाया, अब मन लगाकर आगे का प्रसंग सुनिए। राजा दशरथ का दरबार, अवध नरेश, मुनि वशिष्ठ, चारू भाई और अन्य लोग।
1: महाराज, शुभ विपिन के अपने आश्रम में बसकर ज्ञान मनन तप करने वाले गाध तनय मुनिवर विश्वामित्र जी पधारे हैं।
2: हमारे धन्य भाग्य, सब उठकर उनका स्वागत करें।
3: बैठिए अवध नरेश, बैठिए मुनि वशिष्ठ। वास्तव में एक ही मनोरथ है मेरा राजन, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना।
2: ये आप किसकी बात कर रहे हैं मुनिवर? मेरा दंडवत स्वीकार करें।
3: आप नहीं समझेंगे राजन इस रहस्य को, पर मेरे बंधु वशिष्ठ समझ गए होंगे।
2: अस्तु। ये मेरे चार बेटे हैं मुनिवर। राम, चरण वंदन करो मुनिवर विश्वामित्र के। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। मुनि, अस कृपा ने की ने हुकाओ, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावूं वारा।
3: असुर समूह सतावहि मोहि, मैं चाचन आयो इंद्रप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसिचर बध मैं होब सनाथा। देहु भूप मन हरहित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनक अति कल्याण।
4: राजन, यूं सहसा आपका मुंह खो जाना उचित नहीं। आप रघुवंशी राजाधिराज हैं, ये ठीक नहीं कि आपका हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। उत्तर नहीं महाराज।
2: गुरुदेव, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे हो विचारी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे अतिथि हैं और उस पर भी विप्र। मांगे हो भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिख एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनही गुसाई। और फिर ये भी तो सोचिए, कह निशिचर रति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा।
3: वशिष्ठ जी, आप ही अवध नरेश को आश्वासन दें।
4: राजन, पिता के मोह को अलंकार समझिए, कवच नहीं। आप क्षत्रिय हैं और आपका कर्तव्य है कि मुनियों के आश्रमों पर असुरों का जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद

0: करने के लिए सबसे समर्थ उपाय कीजिए। राम आपकी दृष्टि में हमेशा शिशु ही रहेंगे, ये मैं समझता हूं, किंतु राम पुरुष सिंह हैं, वीर हैं, धीरमति हैं, मैं उनका गुरु ये जानता हूं। और आप राम के पिता नहीं, आप अवध नरेश, आप भी सत्य से अपरिचित नहीं, इसलिए संदेह का नाश कीजिए। कौन जाने राम के इस अभियान के पीछे कोई ऐसा मंगल मुहूर्त, कोई ऐसी कल्याणकारी घड़ी बाट जोहती हो जिसका आपको अभी तनिक भी आभास नहीं है। इसलिए भूपवर, बहुविधेयी आशीष, आप उन्हें ऋषिवर को निशंक सौंप दीजिए।
1: आपका कहना ठीक है, राम लक्ष्मण आगे आओ। तुम क्षत्रिय पुत्र हो, भुजबल और आत्मबल दोनों की महिमा का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से पा चुके हो। समझ लो कि अब तक प्राप्त शिक्षा का अभ्यास करने और शेष शिक्षा प्राप्त करने तुम मुनि श्रेष्ठ के साथ जा रहे हो, पर इधर इधर मेरे निकट आओ, तुम्हें हृदय से तो लगा लूं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब अपनी जननी से विदा लेने अंदर चलो, आओ।
2: वशिष्ठ जी, मैंने तो महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना।

श्रद्धालु श्रोताओं, यों श्याम गौर सुंदर दो भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले। बीहड़ घना जंगल, रास्ते में मुनि को दीखी राक्षसी ताड़का। सुनी ताड़का क्रोध भरी धाई, श्री रामचंद्र ने धनुष खेचा। देखने में भयानक ताड़का, क्या वास्तव में राम की वैरी थी जिससे वे युद्ध करते? नहीं, देखिए एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान के ही निज पद दीना। उसके बाद विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। मुनि वृंद होम करने लगे और राम लक्ष्मण रखवाली। मंत्रोच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही निशाचर मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेना लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मारीच पर तो राम ने बिना लोहे के फल वाले बाण से ही ऐसा प्रचंड आघात किया कि वो सत योजन जा सागर पारा। भीषण युद्ध होने लगा। राक्षस सुबाहु और उसकी सेना क्रोधावेश में उन्मत्त लहरों सी उमड़ पड़ी। तब राम ने अग्निबाण संधाना, पावक सर सुबाहु पुनि मारा और लक्ष्मण अकेले ही असुर सेना पर बरस पड़े। अनुज निशाचर कटक संहारा। आश्रम में निर्भय शांत निर्द्वंद्व यज्ञ कार्य चलने लगे। राम लक्ष्मण को पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाने के बहाने उनके प्रति अपनी आंतरिक भक्ति ही से आप्लावित होने लगी। एक दिन मुनि ने कहा दोनों भाइयों से कि पुरानी कथाएं तो आपको अनेक सुनाई, चलिए कुछ वर्तमान चरित्र दिखाऊं। मिथिला में राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग उस नगरी की छटा और धनुष यज्ञ का मनोरंजन देखें।

0: बताई। शिला, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का पत्थर का शरीर है।
1: क्यों?
0: पति का शाप। अहल्या से इंद्र ने अपावन व्यवहार किया, पति ने दोनों को शाप दिया, अहल्या पत्थर बन गई, इंद्र को भयंकर रोग ने ग्रस लिया। राम, ये पत्थर की मूरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
1: क्यों?
0: गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहि कृपा करहु रघुवीर। देखिए और सुनिए ये लौकिक अलौकिक लीला। राम अपने चरणों से शिला को छूते हैं और

0: इसके बाद गंगा पार करके राम लक्ष्मण मुनि के संग विदेह नगरी पहुंचते हैं। वहां की सभ्यता, वापी, कूप, सुमन वाटिकाएं, चौहट गलियां, चारू बाजार, मंगलमय मंदिर सभी देखे और देखे। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमें कही जाती। लेकिन ऐसी अद्भुत जनक नगरी की शोभा और उसके सुभग नर नारियों का अवलोकन करने वाले ये दो किशोर बटोही जब सैर करने निकले, सारी नगरी वैभव ऐश्वर्य की भव्यता उन दोनों की दिव्य शोभा को देखकर मानो ठगी सी रह गई। श्रोताओं, धनुष यज्ञ से एक दिन पहले की संध्या, एक पुरातन प्रीति की जो निराली घटना घटी उसे सुने। राजा जनक की वाटिका जहां वसंत ऋतु की छटा फैली है, राम लक्ष्मण शोभा निरखने पहुंचते हैं और महिलाओं से पूछकर फुलवारी में फूल चुन रहे हैं। एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवारी में आ पहुंची। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम विवश सीता से जाकर बोली,
1: सखी देखन बागू कुमार दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गार के में कहूं बखानी, गिरा अनैन नैन बिनवानी।
2: अरे ये तो वही तो राजकुमार हैं, सुनि हर्षि सब सखी से आनी, सिए ही अति उत्कंठा जानी, एक कहे नृप सुत दे आली, सुनिजे मुनि संग आए काली, जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहां तह सब लोगु, अवसी देख अही देखन जोगु। अरे राजकुमारी तुम चारों तरफ यूं कैसे देख रही हो, चकित बिलो कति सकल दिसी, जाने से सुन रहेगी सभी।
3: इस फुलवारी के सुमन अत्यंत सुहावने हैं, पल्लवों में वसंत की छटा विकस रही है, मुनिवर को भी भले लगेंगे।
4: सारा बगीचा ही परम रमणीक है। और ये सुना तुमने
3: क्या?
4: कंकन किनकिन नूपुर धुनि,
3: तात
4: मानह मदन दुंदुभी तीनही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनही।
3: कौन है ये जिन्हें देख के आपके भय विलोचन चारु अचंचल, मन

0: सकुचि निमित्त जे दिगंचल।
1: तात जनक तनयाय सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाशु फिरई फुलवाई।
0: पर बात इतनी ही तो नहीं जान पड़ती तात।
1: जासु बिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा।
0: तात आपकी टकटकी इस तरह लगती तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
1: सो सब कारण जान विधाता पर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता।
0: समझा समझा मुझे तो आपका इस तरह ठगे से रह जाना ही बहुत भरा लगता है तात।
1: लक्ष्मण मैं असमंजस में हूँ।
0: स्वाभाविक ही है तात।
1: वह बात नहीं सुनो। रघुबन सिन कर सहज स्वभाव मनु कुपंथ पगु थरे ही नकाऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी जे ही सपने हूँ पर नारी न हेरी।
0: लेकिन भगवान विदेह कुमारी भी तो शोभा की सीमा ही जान पड़ती है।
1: पर लक्ष्मण यह मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं गुरुओं द्वारा दिखाए पथ से विचलित हो रहा हूँ? वह आदर्श जिनका लहे ही न रिपुरन पीठी नहीं पावही पर तियमनुडी थी।
0: इस लता गुल्म में कुछ निराले ही फूल हैं, कुछ इनमें से भी चुने।
2: राजकुमारी तनिक इधर आओ, यहाँ से देखो उस लता की ओट में वो रहे दोनों श्यामल गौर किशोर सुहाए। सखी क्या हमारी राजकुमारी प्रेम बस हो गए हैं? कौन सच की बात है? देखो ना लता मंडप में से दोनों बिल्कुल बाहर आ गए हैं। कैसे अपूर्व छविमान लग रहे हैं दोनों। निक से जनुजुग बिमल बिधु जलत पटल बिल गाई।
3: जनक सुता तो गिरिजा की आराधना करने चली।
4: पूजन को विलंब हो रहा है सखी।
2: राजकुमारी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ बोप किशोर देखी कि न ले हूँ।
3: सकुचो मत राजकुमारी।
2: नयन उधर कर देखो ना सन्मुख आमनी सामनी दो रघु सिंहों का अवलोकन करो।
4: सखियो मुझे मुझे न जाने कैसा लग रहा है।
5: क्या हुआ क्या हुआ राजकुमारी?
2: चित्त तो ठीक है ना?
5: कैसी बात पूछती है तू?
4: चित्त में आह्लाद भी है और क्षोभ भी सखी।
5: क्षोभ क्यों?
4: सुमेर पिता पनु मन अति क्षोभा। और क्या कहूँ सखी?
5: सखियो राजकुमारी को जो परबस देखकर मुझे भय लगता है, इन्हें अब ले चलना।

0: मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदा उर्पुर सबही के।
1: सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरु। करुणा निधान सुजान सीर, सनेहु जानत रावरु।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।